कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोख संताप राहु। गुण गोविंद गावो सब हर जानो राग रतनो रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते गुर कै बचन जपे हर जाप सागर तरे भरम पै बिनसी कहो नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा ताप लाहया गुर सिरजन हारू सतगुर अपने कहो बल जाई जिन पैज रखी मसार संसार रहाऊ कर मस्तक धार बालक रख लीना।

0: शिव संगीता समेत सुजान चांदे इस पिंड वाले चल पे।
1: रूप सब ते राज तलाव हैं से कर्म कमैया नानक जंत बजाय बाजय तित पावे तित जित पावे तित राह चलैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगम गोचर त्याया हो बल बल सतगुर गो सत पुरख परखैया राम राम मेरा प्राण बसाई सतगुर परस हार नाम समैया जन की टेक हार नाम टकैया सतगुर की धार लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लहिया राव। ए शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत कढैया लाल जवेहर नाम प्रगासिया भांडै भाव पवै तित अइया दासन दास दास होय रहिया जो जान राम भगत निज पहिया मन बुद्ध अर्प धरो गुर आ गई गौर प्रसादी मैं कथक तैया मन मुख माया मुह बया पे मान तृष्णा जल तत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया ए मन माना च सतगुर आ गई अनहद शब्द तुन तूर बजैया हर हर उसत करै दिन राति रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग लता मन गावै हर रास ताल रास शब्द रबैया निज कर धार चूहै अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै अभिमानी ज्यों बालक बालू घर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन महे पिन पिन टह पैया हार सार सागर पार है आपी एह जग है सब खेल खलैया ज्यों जल तरंग जल जलै समावै नानक आपे आप रमैया बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पस मंदर रड़ैया अमर पिंड भई साधु संग जन्म मरण दो मिट गैया मेरे मन साध संगत मिल रहीया कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खैन खैन साधु चरण पखैया रहाऊ तजै विग्रस्त भया मन बनवासी एक खैन मनुआ टकै ना टकैया धावत धाई तदे घर आवै हार हार साधु चरण पवैया धियां पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर हुआ मान दै दिस चल चालू गवन करैया प्रभवन करै बूझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दई अंदया घर।

अपना बेहू प्रभु तुज बिना नहीं ठाऊ नानका बल बल जाऊं। लोभ मोह बाधी देहे पाज बेन भजन होवत के जमदूत महाभयानू चित गुप्त कर्म जानू दिन रैन साख सुनाई नानका हर सरनाई। पै पंजन मुरार कर दया पत उधार मेरे दुख गने न जाही बिन हर बिना कतह समाही गह ऊट चित वी नाथ नानका दी रख हाथ। हर गुण निधे गोपाल सर्ब घाटू व्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आसु एक निमख रहन न जाई वड भाग नानक पाए। प्रभ तुज बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यों मीन जल स्यों हेत अल कमल भिन न पेत ज्यों चक वि सूरज आसु नानक चरण प्यासु ज्यों तरण भरत प्राण ज्यों लोभी है तन दान ज्यों दूध जलै संजोग ज्यों महा खुद्यार्थ भोग ज्यों मात पूतै हेत हर सिमर नानक नहे नेत। ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरतन संग मैंग लय काम बंद ज्यों ग्रस्त बिखई धंद ज्यों जुआर जुआर बिसन न जाही ना हर नानक यही मन लाई। कुरंक नद नेहि चातरक चाहत मेहि जान जीवना सतसंग गोपाल भजना रंग रसना बखाने राम नानक दर्शन दान। गुण गाई सुन लिख दे सो सर्व फल हर ली कुल समूह कर तो धारू संसार उतरस पारू हर चरण बोध ताहि मिल साध संग जास गाही हर पैज रख मुरारू हर नानक शरण द्वार बिलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एकम एकंकार निराला मर जो नी जात जय न जात न जाला गमा गोचर रूप न रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिस को बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई। क्या जाप जापो बिन जगदीस दूजै भाई लगे पछताणी जमदर बाधिया गुण जानी क्या ले आवे क्या ले जाए सिर जमकाल से जोडा खाई बिन गौर शब्द न छूट सकोई पाखंड की न मुक्त न होई आपे सच किया कर जोड़ अंड ज फोड़ जोड़ बिछोड़ धरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ रात दिन अंतरी किए भोग पाऊ जिन किए कार रखण वेखण हारा अवरना दूजा सृजन हारा तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देव उपाय बेसा ज्योति जाति गणत न आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाई रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ पाई चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दसा खाट तीनों पाई सो बूझे जिस आप बुझाई तीन समावे चौथे वासा प्रणवत नानक हम तांके दासा पंचमी पंच भूत बेताला आप गोचर पूरख दै नराला। एक ब्रह्म भूखे मोह प्यास एक रस चाख शब्द प्यासे एक रस चाख शब्द त्रपदासे एक रंग राती एक मार चूतूर एक दार कार साच देख हजूर झूठे कौ नाही पत नाऊ कबू न सूचा काला काऊ पिंजर पंखी बंध्या कोई शेरी पर मैं मुक्त न होए तो छूटा है जा खास मछड़ाई गुरमत मेले भगत रड़ाई खाशई खट दर्शन प्रभु प्रसाद जी अनहत शब्द निराला बाजी जी प्रभु भावे ता महल बुलावे सब देश भेदे तौ पत पावे कर कर वेश खपे जल जावे साचे साची सच समावे। सप्तमी सत संतोख शरीर सात समुंद भरे नैरमल नीर मजन शील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सबम पार। मन साचा मुख सच उपाय सच निशान सा निशाने ठाक न पाई अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साज साधय सच नह केवल कर्म आराध्य पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ तिस मैं मनुआ रह अल बुलाई। प्रणवत नानक काल न खाई नौमी नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कटकट नाथ महाबलबंडा आई पूताई जग सारा प्रभ देश आदि रखवारा राज जुगादी है पी होग वो बनासी करण जोग। दसमी दान दसमी नाम दान इशनान आंदन मजन सचा गुण ज्ञान सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै बिलम न टूटस काच तागै ज्यों तागा जग इवै जाणऊ अस्त्र चीत साच रंगमाण।
ਏਕਾਦਸੀ ਇੱਕ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ ਹੰਸਾ।

ममता मोह चुका वही भल पावे मोक ब्रत आत्म चीनय पाखंड राच तत्ना चीनय निर्मल निराहार न केवलु सूचे साचे न लागे मालु जा देखो ता एको हो एका होरन जी उपाय वेको बेका फलो हर किए फल जाए रास कास खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साज कमाए द्वादश मुद्रा मन अवधूता अहनस जागै कवे न सूता जागत जाग रहे लिबलाई गुर परचै तिस काल न खाई आतीत भई मारी बहराई प्रणवत नानक तह लिबलाई द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जातो भीतर आने बरती बरत रहे ने काम जपा जाप जपै मुख नाम तीन भवन में एको जाने सब सोच संजम साच बखाने तीरस तरवर समुंद किनारे अमृत मूल शिखर लिवतारे डर डर मरे न बूढ़े कोए न डर बूढ़ मरे पत खोए डर महे डर का डर मह घर घर में डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे पा सावें लह पावे राज तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जोगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिव लाई अमावस्या चंद गुप्त गहनारू बुझहो ज्ञानी शब्द विचारु ससियर गगन जोत तहलोई कर कर विखे करता सोई गुरते दिसे जो सो तसी माए मन मुख भूले आवह जाही घर दार थाप सिर सान सुहावै आप पछाणे ता सतगुर पावै

अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी दब दप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु समृत शास्त्र जी कार क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नैचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करे सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते गे जी जो सबसे का जन होई आसा महला चौथा तू करदा सजार मैं डांसाई जो तू पावे सोई थिसी जो तू दे सोई हम पाई राव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल जोग मल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या जन सुख पाया उसे जे ही हर नाम समाया

जन्म भया प्रणव जनानक जनकी शरणा जन तू नाही विसरिया। आस्था महला पंजवा पही परापत मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अबर काज तेरा कदाना काम। मल साध संगत बज केवल नाम, सरंजा मिलाग पव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए जित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो ब्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ द मोह बचाव हो। सुखी बसे मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे आए, सब बैरन कौ आज संगरे आए। पूर्ण हुए हमारी आसा, दूर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख मारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास ने भरे आए। हु जो सदा हमारे पछा, सरियस तो जो करे रक्षा। राख ले मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्ट के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबधरा, काल पाए शिव जीव अवधरा। काल पाई कर विष्णु पर गाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जो की सब कियो, भेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन बजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सुवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सदरन को बल मोहमद कियो। गड़ गड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की बीर बजानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर भूला। संतन दुख बाई दे दुखी, सुख बाई साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, गड़ गड़ के बट बट की जाना। जा बोध करख करा कर तार, प्रजा धरत तब दे पारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेठ सब धारे, आप अपनी बूझो जा रहे। तुम सब ही तेरा तंदरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आदि नील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपा ने अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत।

0: पुरख निरभउ
1: निर्वैर
0: निर्वैर
1: अकाल मूरत
0: अकाल मूरत
1: अजूनी
0: अजूनी
1: सैभं
0: सैभं
1: गुरु प्रसाद।

0: अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की गुरु सारी सात संगत जिमें के आपकी नू स्टेज वालों दास जी कल की गैर हाजिरी बारे सूचित किया सी कि मजबूरी सी और इनी शरीरक अवस्था ठीक नहीं सी कि मैं उतों जाके वापस पाऊंगा इसलिए कल की गैर हाजिरी की खिमा याचना करता हाँ ते अज उस कार्य नू संपूर्ण करने का यत्न कर आओ जितने माई भाई गुरु महाराज जी हजूरी विच हाजिर होए हो गुटका साहिब अपने अपने हथां विच ले लो जिन्हां दे मोबाइल ते पाठ है वो मोबाइल ते देखो और पिछली बारी भी बंगला साहिब ते कल भी एक बीबा जी ने बड़ी सुंदर प्रेरणा की कहन लगी समुचे गुरबाणी पढ़ वाले जगत नू प्रेरणा करो कि कदे भी बाणी की पोथी नू गुटका ना कहो इनू गुटका साहिब कहो अबले ते पोथी साहिब कहो क्योंकि अजकल एक नवी बीमारी गुटके की चली है कुछ लोग उस नू खांदे हन वरते ने पता नहीं की बला है पर उन्होंने भी गुटका कर तो साडे लई ते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत साहिब इसलिए इनू गुटका नहीं कहना गुटका साहिब पोथी साहिब तो आओ मैं उन्होंने नाल वचन कर लिया बीबी जी मैं जदों भी जिथे भी जावांगा मैं जरूर संगत नू इस गल की जानकारी देंगा कि इनू कला तो आओ चौपाई साहब की विचार शुरू हो चुकी थी लगभग अद्ध विच पहुंचे भाई साहब याद होगा जिथे जिक्र हो चुका है उस तो अगे आरंभ करते हैं जितनी संगत आ रही है जी आया जिहड़े आ रहे ने वह भी शामिल हो जाएंगे और ये भी तुहानू खुशी है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है यदि फिर पेन ड्राइव या सीडी जो भी सिस्टम है वह भी थोड़े तक पहुंचेगा तो आओ जुड़न का यत्न करिए करो जी कृपा
0: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा
1: हुण इस पौड़ी के अंदर पातशाह सानू ये जानकारी देंदे हैं हे अकाल पुरख जी जब उदकरख करा करता ये दो शक्तियां हैं एक दा नाम है उदकरख एक दा नाम है आकरख उदकरख दा मतलब मैं किसी चीज की उत्पत्ति कर किसी चीज को जन्म देना पैदा कर संसार के अंदर उपजै निपजै निपज समाई नैना देखत ए जग जाई पातशाह ने एक दो अखर भी सानू समझा दिता हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना गुर ते समझ पड़ी कह दन हे अकाल पुरख जी जब जदों तुसी अपनी उदकरख शक्ति की वरतों करते हो करा करता ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਤਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ

0: इन्हों होनी कहना हो जब आकर्ख करत होकर जो थी मौज आ कि इन्हों आकर्षण करना खिंचना है अपने वल लेना है बस थोड़े फुरने की लोड़ है। देखो बरखा होंगी है, बरखा तो पहलों तुसी कोई डड्डू लभन जाओ तो लभदा नहीं, पर मीह पै के हटदा तो जगह जगह से डड्डू, जगह जगह से भमक्कड़, जगह जगह से कितने पतंगे पैदा हो जाते, पर जदों बरखा हट जाती है अकाल पुरख जी का हुक्म है जदों आकर्ख करते ने तुम मैं मिलत देह तर सब, जितने देहधारी होंगे ने जिन्होंने थोड़े हुक्म शरीर धारण किए ने सब थोड़े लय हो जाते मिल जाते ने एक मिक हो जाते ने भावना की हस्ती खत्म हो जाती है।
1: जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै।
0: शब्द सृष्टि है पर इस सृष्टि के टैके सियारी लगी हुई है, जितने शरीर इस सृष्टि के अंदर धारै धारण करते ने पैदा होंगे ने जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। जितनी जितनी बूझ समझ तुसी किसे नू बख्शिश कीती है उन्नी उन्नी ओ तुहाडी सिफसला करदा है, तुहाडी ओ वडियाई करदा है।
1: तुम सब हीते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।
0: पर तुसी सारिया तो निरालम, निरालम दा मतलब है निराले, निर्लेप वखरे रहिंदे हो, तुहाडे ते कोई असर नहीं। जे सब मिलके आखण पाहे वड़ा ना होवे घाट मंट, जे सारे असी रल के कहिए परमात्मा बहुत वड़ा बहुत वड़ा, उन्हों को फर्क नहीं। जे असी सारे रल के उसनू छोटा की उन्हों को फर्क नहीं। उदे जेवड़ आप जाने आप आप, जिड़ा वड़ा वो आप है वो आप ही जानता है कितना वड़ा है। इसलिए पातशाह कहने में तुम सब ही ते रहत निरालम निर्लेप रहते हो, जानत वेद भेद अर आलम। वेद धर्म ग्रंथ हैं, भेद उदा अंतरा उदे अंतरी भाव नूं, आलम कहिए जो इलमवान विद्वान लोग ने वो जानते हैं।
1: निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ।
0: ओ काल पुरख परमात्मा जी निरंकार हैं, निरंकार का मतलब जिन्हों का कोई आकार नहीं, निर्विकार जिन्हों के अंदर साडे वांगू कोई विकार कोई दोष कोई फुरना नहीं फुरना। निरलंब ये दो अखरों का जोड़ है, अलंब कहते ने आसरे नूं, निरलंब कहते ने जिन्हों आसरे की लोड़ नहीं। असी सारे एक दूजे के आसरे चल रहे हैं, पर परमात्मा किसी आसरे की लोड़ नहीं। निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असम। आद का मतलब है जो मुढ़ तो है, रोज तुम जपजी साहब भी पढ़ते हो, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को देश। पातशाह कहते वो वाहिगुरु अकाल पुरख जी जो हैं वो आद मुढ़ तो हैं, अनिल उन्हों का कोई विशेष रंग रूप या उन्होंने कोई कलंक बिलावट नहीं है, अनाद उन्हों का आद भी कोई नहीं जानता, किसी नूं साडे विचों पता नहीं। ये ठीक है कि कई लोगों ने अपना समा इस पासे वेस्ट किया, पर सानू ते बाबे नानक ने रोके आख्या ना तुसी इस पासे नहीं तुर, क्योंकि असी अंत जान ही नहीं सकते। अंत कारण के ते बिल ना है ताके अंत न पाए जाए, ये अंत न जाने कोय बहुता कही है बहुता कोय, जिन्ना उसनू वड्डा कहो उस तो भी वड्डा है। इसलिए वो परमात्मा आद अनिल अनाद जिदा आद भी कोई नहीं जानता, असंभ जिना किसे तो पैदा नहीं होया, जिनू सह भंग भी किया, सुते प्रकाश भी किया है।

0: आयो।
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास से ताहे उबारा, उन्होंने तुसी काल दी फाई तो बचा लिया।
2: जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।
1: जिन नर, ए नर बहुवचन है, जिन्हा मनुखा ने नाम तिहारो का तुहाडा नाम जपिया है, दारिद दुष्ट दोख तेरा, ओ दलिद्र तो ओ दुष्टा दे प्रभाव तो दुखा तो बच गए, भाव उन्हां दे नेड़े ए चीजा नहीं अपड़दियां।
2: खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी।
1: जिवें पहला हाथ तुर जाया, इसे तरह इत्थे परमात्मा दा एक नाम खड़ग केत है। केत दा मतलब भी है झंडा, ते खड़ग दा मतलब है कृपान। उत्थे अस्त तुर जाए ते खड़ग केत, पर इस नूं पाठ करदे समय संबोधन कर असी की कर जा खड़ग केत में नहीं, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। इहदा पाठ करदे समय इत्थे थोड़ा जिहा जंबुक छोटा जिहा विश्राम दे, हे खड़ग केत मैं शरण तिहारी, मैं तुहाडी शरण विच हाँ। बहुत सारे प्रेमी इहनूं तुहारी पढ़दे नहीं, इत्थे तिहारी लिखे। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈ ਹੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ।
2: ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ।
1: ਸਰਬ ਠੋਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, मोहो सहाय मेरे सहाय को और मैनू दुष्टा तो दुखा तो बचा लेना करो।
2: सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने।
1: सात संगत जदों तीकर इस तरह क्लास विच बैठे संथा दे रूप विच सुनिया ना जाए, पढ़िया ना जाए, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਵੱਈਏ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ 4 ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ।

0: भी पढ़ना कितना आनंद आया और विश्राम भी ठीक लग गए, अर्थ भी हो गए। आओ फिर भी अपना मर्यादा मुताबिक भी संथा कर रहे हैं, पाए गए कलगिया वाले पातशाह ने, हे वाहिगुरु जदों दे मैं तेरे चरण फड़े हन, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आने। जिमें एक सुहागणी स्त्री जदों किसी का पला फड़ लेंदी, वो कहने पति देव हुण तुसी मेरी पत दे रखे हो, उस्त निंदा नानक जी मैं हब वंजाई, छोड़िया हब किज त्यागी, हबे साग कुड़ावे डिठे तौ पले तेंदे लग। ते जेड़ा गुरु का सिख भी खवाए ते फिर वर्त भी रखे, फिर कबरां ते भी जाए, फिर जोतशियां कोल भी जाए, इहदा मतलब उहनूं रब ते कोई भरोसा नहीं, ताहीं ते भटकदा फिरदा। कलगियां वाले पातशाह ने, हे वाहिगुरू जदों दे मैं तेरे चरण पड़ ले ने, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे दिया, मैं नहीं किसी होर नूं अख थले लिआउंदा। हैगे ने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत, मैं नहीं किसी नूं मानदा। हैगे सारे ने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो एक तेनू मानता। बड़ा स्पष्ट, किसी की कोई निंदा नखेदी नहीं, अखर दुनिया में है बड़े ने, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक नाम। गुरबाणी च मत अखर तीन रूपां में आता है, एक मत है ममा ततेनु सियारी, मत बुद्ध अकल। एक मत है जदों असी किसी नूं वार्निंग देने हां मता ये कम करें, उहदी पछाण की है तत्ते नूं औंकड़ होवेगा। ते एक मत आउंदा है ममा तत्ता मुक्ता मत, वह प्लूरल है बहुते बहुवचन। तो महाराज कहंदे ने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मत, मैं नहीं किसी को मत। सिमृत शास्त्र वेद सबै, सिमृतियां भी हैं, शास्त्र भी हैं, वेद भी हैं, बहुत भेद कहें, बड़े अंतर कहें। कोई का रब सरगुण है, कोई का निर्गुण है, कोई का लेंदे है, कोई का चलते, मैं नहीं मानता। मैं तो तेनों सब था ही मानता, सिमृत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जाने हो। देखो जो तुम इस तरह समझ के पाठ करोगे तो रस भी आएगा, तुहानू ज्ञान भी आएगा और तुहाडे मन नूं ठंड भी पवेगी। वाह वाह, ये तो बाणी सारे कपाट खोल देती। ते फिर कहने श्री आसपान, श्री शब्द कदों वरत्या जांदा, जदों किसी नूं आपां ने शोभा देनी होवे ना उदों श्री शब्द वरते। श्रीमान जी, श्रीमती जी, श्री आसपान, अस कृपान, पान हथ, जिसके हथ विच कृपान है, ये अकाल पुरख का नाम है। श्री आसपान कृपा तुमरी कर, तुहाडी मेहर दे नाल मैं ना कहो सब तोहे वखा, मेरी कोई समर्था नहीं, ये तो तुहाडी कृपा नाल मैं सब कुछ कह दिता है।
1: दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार।
0: ध्यान रखना, भाई साहब ने पढ़न का यतन किया, ठीक किया, पर आम प्रेमी गयो बोल दें, ये गयो नहीं है, गयो है। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, गयो का मतलब पकड़ना, मैं सारे दुनिया के दरवाजे छड़ के तुहाडा दर फड़ू, गयो पकड़ो। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। अगे जी,
1: बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।
0: बाह गहे की लाज अस, हुण मेरी तुसी बाह फड़, ते बाह फड़े दी लाज रखनी, वो लाज की रखनी, भई मैनू हर जगह ते मेरी सहायता कर। आप सारे ही कहें ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀਤਾ ਰੋੜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਪੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਾ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖ। ਤੋ ਬਾਂਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਹਾਰ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।

अज तो कई सदियां पहला पंजाब से उत्तरी भारत में जोग मत का जोर सी जिन्ना बारे लोगों नू बहुत वड्डा भुलेखा सी कि जोग समान कोई भी शक्ति नहीं जोगियां ने जटा बधाउणियां पिंडे ते सुआह मलनी तुए तपने आसन लाने वर्त रखने गृहस्थी लोगों नू डराउणा ते करामातां विखाउणियां अते उन्हां तो अन्न इकट्ठा करना यूपी की धरती के उत्ते इन्हां योगियों का एक बहुत बड़ा

यूपी के जंगलों की धरती सतगुरु सिद्धा दियां धूणियां तो थोड़ा पासे एक पिपल दे हेठां विराजमान हो गए। मर्दाने दियां उंगलां ने रबाब दियां तारां नूं छोया। रब्बी बाबे ने तुरकी बाणी गाई। ए पिपल काफी देर दा सुक्या होया सी, अज इसने लगना छड़ियां हरे हरे पत्ते चूमन लगे। ए कोई करामात विखाउण वाली गल नहीं सी, ए तां सतगुरां दे प्रचार दा इक निराला ढंग सी ताकि जोगियां दा ध्यान अपने वल खिंचा जावे। रात पई सिद्धा आपको अपनियां तूणियां लाके बैठ गए। जोर दी ठंडी हवा चली। मर्दाना कहिंदा चैन चैन सर्दी बड़ी लगदी है, जे हुक्म होवे ते सिद्धा कोलों अग लाया वा। गुरु साहब मर्दाने नूं इउं कहिंदे।

0: ठाकुर जी की फतेह।
1: इसी तरह रात बीत गई, सिद्ध गुरु जी के उदाहरण इकट्ठे हो गए, करम माता नाल गुरु जी नु डराउण दी कोशिश कर लगे, चारे पासे पानी खत्म करके गुरु नानक जी नु कहण लगे, तपा जी असी तेरे नाल बहुत दुखी हां, साडी प्यास गंगा दे पानी तो बगैर मिटनी नहीं, कृपा करके जां तां सानू गंगा तो पानी लिया दियो, नहीं गंगा नु इत्थे मंगा दियो। गुरु जी कहिंदे मर्दाने जा गंगा लाया, मर्दाना तुरन लग्या तां सिद्ध कहिंदे तुरता चले अगे जंगलां दे छेड़ां ने, तैनू को को के खा जाने, क्यों मरदा आप दे गुरु नु भेज दे, पर मर्दाना रुकया ना, साहिबां दी दसी होई विधि नाल मर्दाना जल लेके

रामनाथ, मंगलनाथ, गोपीनाथ सिद्धा ने गुरु जी के विचार नु मन लिया, पर कुछ इंकारी ना तैयार होए। गुरु जी नु कहंदे तपा जी सानू भोजन ते दुध दी लोड़ है, ऐसे टाइम पैदा कर दियो। नेड़े खूह सी जेड़ा अज भी दुध वाले खूह दे नाम नाल मशहूर है। गुरु जी ने एक दुध नाल भर दिता ते मर्दाने नु क्या, मर्दानिया जेड़े बोर्ड थले बैठे इस बोर्ड नु हलून दे। मर्दाने ने बोर्ड नु हलूने ते तरह तरह दे भोजन गिर लगे। सिद्धा ने भोजन छकिया ते गुरु साहब दे चरणा ते डिग पाए। कहने चंचा सानू जोग दी चुगती समझाओ। धन गुरु नानक महाराज सिद्धा नु यो समझाउन लगे है। उस वेले साके नु बलदेव सिंह बिल्लू, जसवंत सिंह दीवाना ते जरनैल सिंह गिल इउं बयान करदे आ।

मेरा मन लुटै गुरु दर्शन ताई, दिल करे चातरख की न्याई, त्रिखाना उतर शांत नया वे। बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों खोली जियो खोल कमाई। गुरदर्शन संत प्यारे।

अग रंग संडोलिया सगला खाया मास ए दोए ननुह मत छूहो फिर देखण किया। बाबा फरीद साहब दा मास चूंड चूंड के कां खा दिया सी, खांदा खांदा अखां तक आया बाबा जी ही लेना। जदों अखां वल वधिया किंदे ने खावा सारा मास चूंड लै अखां ना खाई। वो कहिंदा जी क्यों की गल। बाबा फरीद साहब कहिंदे ने दीदा तन सुख

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाउ। बिन जिहवा कहाँ को बकता, बिन श्रमना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै। नाम बिना नर कहीं ना लेखै, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों महला पंजवा, हम मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस कीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाउ। जिहवा रोग मीन ग्रसियानु, बासन रोग

फिर फिर जो नी भरम रोग बंद रहन रत्ती ना पावे बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोग हो काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरू महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपूरै दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा।

चीत आवै ता सद तनवंता, चीत आवै ता सद निभरंता, चीत आवै ता सब रंग माणी, चीत आवै ता चूकी काणी, चीत आवै ता सहज घर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, हम सुख पाया

ते अंत अपूछे राज हमारा सदही निश्चल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा बेरी सब जोग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूत एक रंग लीने भैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर

तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाई। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भय दयाला, नानक दास देख भय निहाला। पैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सिका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दी मान, सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेविया तिस भौ ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै।

नाम लैत मन परगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अति मूड सोगे।

मुहे दुहागने आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटियो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुर पूरा पूरा प्रसाद जा सो प्रगट भये गोपाल ताकै दर्शन सदा निहाल सर्ब गुणा ताकै बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभु।

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समझूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, पैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लये सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगा जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लये सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप जी।

कामी रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरा कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अपर अपार रहाओ नाम हमारा निश्चल तनी नाम की महिमा सब मह बनी नाम हमारा पूरा साह नाम हमारा बेपरवाह नाम हमारा भोजन पाओ नाम हमारा मन का सुवाओ नाम ना विसरे संत पर

तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभ दात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दतारा, तौ प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम

सुख होए, कर कृपा जा को मिले सोए रहाउ, जाके कर्तव लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब घट माए, प्रगट भया साधु के संग, भगत आराध अन दिन रंग, देंदे तोट नहीं पंडार, खिदमह थापय।

प्यासा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बर्ण बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ

छाप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै।

रहाउ। भगत की निंदा कंध छेदावे, भगत की निंदा नरक पहुंचावे, भगत की निंदा गर्भ में गले, भगत की निंदा राज ते टले, निंद

अणहुंदा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया।

मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरों महला पंजवा निरतन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना सगल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने को देव हो नाम सफल सेवा गोपाल राई कर्ण करावन हार स्वामी ताते बिरता कोई ना जाए रहाओ रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखिए का मटावो प्रभ सोग न थावे को तुम थान बैठावो दास अपने को भगति लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नस्तै जाने अपने कह हर मन बसै पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहल लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै

रहाउ। संत मंडल में है जन्म मरण रहे, संत मंडल में है जम किशु ना कहे, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में है नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल में है पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में है हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दूर।

का सुख हुए, निकट न आवे ता कह जाम रहाव। जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले। सब किश जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख भंजन ता

कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ पेख हजूर। ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए। रहाउ अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरी। बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारी, नाम औखद मन पीतर सारी, गुर पेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

आई परवान। सफल हुई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी। सास ग्रास जपो हर हरी, पैरू महला

आई, सर्व सुख वसह मन आई, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए रहाउ, पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बख्शन हार, भगत

आवण जाण रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए। बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। कर्ण कराम नहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी सरनाए। भैरो महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे। नाम बिहून सुखी क्यों सोवे, हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे। मूल बिना साखा कत्या है, गुरु गोविंद मेरे मन त्याए। जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मलाई। रहाओ तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बूझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख। काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ की ना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ। तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार। तैरु महला पंजवा, गुरसो परसन हुए पौ गए। नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा कृपाल। बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने। साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रतन भने। रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत। आठ पहर हर हर जप जाप, राख नहार गोविंद गुरे आप। अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे। मानस की कहो केतक बात, जम ते राख दे कर हाथ। निर्मल सोभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म।

सुखदाता मेरा तै भंजन अबनासी राई दर्शन देखे है सब दुख जाई जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाऊ पूर्ण काम मिले गुरदेव सब फलदा।

नाही किस सोग, दुख दर्द लह ब्यापै रोग, सब किश तेरा तू कर ले हार। पार ब्रह्म गुरे अगम अपार, निर्मल सोभा आचर्य बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी, जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किश प्रभ ते होए, पैरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने, सर्ब मनोरथ पूरन करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत।

0: केवबोधी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Satguru ki seva karein chakri

असंख नाव संख थाव गम गम संख लो संख कहे हैं सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सरसन योग बखाण। जिनह लिखे तैस सिर नाहे जो फरमाए तिवत पाए जेता कीता तेता नाऊ बिण नावे नाहीं को थाऊ।

उदबली थी कपड़ो इंदे साबुन लिया होतोए परिया मत बापा का संग हो तो पहना वह कह रंग पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख ल जाओ आपे बीज आपे ही खाह नानक हुक्मी आव जाह तीरथ तप दया दत दान जेको पाव तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगात तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मनाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ्य आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ गवन सुवेला भगत गवन गवन सित गवन वार गवन से रुति महा गवन जित आकार वेल ना पाईया पंडती जे होवे लेख पुराण भगत ना पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण सित वार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक औ साजे आपे जाने सोई गिव कर आखा गिव सालाही क्यों वरनी गिव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कह होवै नानक जे कहो आपो जाने अगे गया न सोहै पातालां पाताल लख आगास आगास ओड कोड कपाल थके वेद कहने कवात सहस अठारह कहन कते बासलू एक धात लेखा होए ता लिखी है लेखा होए बिनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाह इति सुरत न पाईया नदियां आत वाह पवह समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान ग्रह सीति माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन न विसरहे अंत न सबति कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न जापै क्या मन मानत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाही ताकि अंत न पाए जाहे एह अंत ना जाने कोए बहुता कही है बहुता होए बड़ा साहिब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ ए बड़ ऊंचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिख्या ना जाए बड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंगे जूदा पार कित्या गणत नहीं विचार किते खबद टैम बेकार।

जुग जुग एक होवे। एक दूजी पौ लख हो है, लख हो है लख वीस, लख लख गिड़ा आखी है एक नाम जगदीश। ए तराहा पद पवड़ियां चढ़िया हुई अकीस, सुन गलाया काश की गीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर च पैन जोर जोर।

सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे तृपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे आखिजे अभिजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदार दिशदिंग निवासी जरबट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकाल जोगे जल भोगे जल राजे डल साजे अकाल धर्मंग लाख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं बाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद दग प्रसाद आद रूपनाद मूर्त यौन पुरख पार सर्वमान त्रमान देवा पेवाद उदार सर्व पालको सर्व कालको सर्व गोपन कालु जत्र तत्र विराजी अवतूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जा करु जन मरण विहीन नाम ठाम न जात जा कर रूप रेख न रूप रंग न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त जो नाद सीख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यु अनुराग नाम कामहीन पेखत दाम हुन जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तदाहि एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत गोबर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सो जानी के जेव दात मात न जात जाकर जन मरण महीन चकर बकर फिर चदर जाक मानी पर दीन लोग चौदह के विखय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप वरीन मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचो सुयम पवकर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जा कहें जात बात न नाम गर्भ गंजन दुलट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप ही कान सदायक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग अनात्मा एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व कुब्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ध्यान पेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वीर प्राण जा कहे नेत पाखत नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन पंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दन अनाश

गातमे च बार गुण गणोदार मुन गण प्रणाम निरपैने काम अत दुत पर जांड मित गाद्या खांड अलेश कर्म अदृश धर्म सर्व बरनाढ़िया आण जांड बाढ़ चाचरी छंद दा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियं निरनामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चकर करदा चतर चकर हरदा चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरदी चतर चकर भगते भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद न सतरा न मित्रा न परम न पितरा न कर्म न काये जन्म न जाये न चित्रा न मित्रा पर पवित्रा प्रतिशा दिशा दृशा कृषा भगवती छंद प्रसाद कथ ते क्या सिज देसा क्या पिज पेसा क्या गंज कर्म क्या पंज बरम क्या पिज लोक है क्या दित सुख है क्या भूत वरण है क्या भूत करण है क्या राज प्रवाह के धर्म तुजा है क्या सुख वरण है कि सर्वा वरण है के जागतंग कृतियां के शतरंग क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुपवन रूप है के आदो देव है के आप देवाए के चतुरंग महीना के कैधीन है के रोजी जाकर ही मैं रहा कह के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के शान शाह हैं के कारण गुनंद हैं के रोजी रहंदा हैं के राज करीम हैं के कर्म करीम हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गावने हैं के सर्वत्र भावने हैं

एवं प्रवाह जय अजाय भगवती शांत तब प्रसाद के जाहर जूर है के आज रह जूर है हमेशा सलाम है समास कलाम है के सब दिमाग है कहू सुन चराग है के कामल करीम है के राज करही मैं के रोजी दहंद है के राज ग्रहंद है ग्रीवल कमाल है के हुसनो जमाल है ग्रीवल खराज है ग्रीवल निवाज है हरिफल सकान है रासल पकान है कलंक प्रणास है समासल निवास है अगंजल गनीम हर जय गरीम है समातुल जवाह के साहब ग्रह नरक प्रणास है वैसुल निवास है सरबल गवान है मेसुल दरबान है तमाम तमीज है समातुल अजीज है पारं परमेश है समातुल अधीश है देसल लेख है मेसल भेख है जमीन जमा है मी गल माह है ग्रीमल कुमार है गजरो जमाल है गजरंग प्रकाश है मित्र पर सवास है

जबन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहि हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दयांत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो गड़ गड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस फूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़ गड़ के बड़ बड़ की जाने जब उद करख करा कर तार प्रजा दरत तब दी अपार जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी बूझो जारे तुम सब ही तेरे तिंदरालम जानत बेद बेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद सांब ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिंत न भैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भैन भैन तोय देती तुमरा लखन जाय पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज सिद जगेनी उत्पज खान बहोर रज देनी कहूं भूल राजा वा बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम्पव आदि जुगाद स्वरूप सुजम्पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग करो दोष जिते

मनमजियां बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्द उदा गाव हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नंगला।

आनंद सुनो बट बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बनीत गायते पवित सतगुर रहा पर पूरे

अंत नहीं किस पार बार। घर बाहर तेरा प्रभासा, तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने।

तारण तारण हरण दुख न सक व्याप साधु संग भजो गोपाल आन संजम कृष्णा सूज इह जतन काट कल काल राव। आदि अंत दयाल पूरन तस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करें विचार मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेका।

नानक गुरु ना जितने मन अपने सोचे छुट्टे तलबोआर ज्यों सुंजे अंदर थे कितने छुटा कहो नानक सनाओ फुले फुले बपुड़े भी तन विच सवाओ कौड़ी अति ने।

जिन सदगुरु के लिए ना पाया, जिन सदगुरु के लिए ना पाया, सदगुरु आप रखिए उनके प्रगड़ा सुनाया। सदन सदा मुक्त है जिन विच मो चुकाया, उत्तम ए विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया, जग जीवन

0: देव की संतोखी जिन सत्य सत्य आया उन मंद पैर न रखे उन कसकित क्रम कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बसी सी अगला निदेवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया
1: और अमृत कहने

बदे मां बली कर सच्चा ढोवा अपने चरण जपायन विच दई खड़ोवा रोग सोग सब मिट गए

मैं तो हर भाई मन मुख नो फिर जन्म लोक महलाओ पहला सिमर सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओ जी आवे आस का जाए निरासे कित फल फिक्के फुल।

सूतक मनिए सते सूतक होए गौतलक इंद्र कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए एला पानी जीव है जित हरिया सो कोए सूतक क्यों पैर रखिए सूतक पवेर सोए नाल सूत के नौ तुरे।

0: नानक जन सिर तुझ देता है। हर का नाम जन को मुक्त गुप्त, हर का नाम जन को तृप्त भुक्त, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जगत का परे न भंग, हर का नाम जन की बड़ियाई, हर के नाम जन को भापाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कठिनाई वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नाम तो पूजय हर हर देवा, हर हर जन के मालिक दीना, हर जन जन को आप्रभ दीना, हर हर जन के ओस पिछानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओस पोस जन हर रचराते, तुम समाज नाम विस्माते, आज पैर जन हर हर जपे, हर का भगत कैस नहीं छपे,
1: हर की भगत मुक्त भाव करे, नानक जन संग से करे,
0: पार जात के हर को नाम, साम दिन हर हर गुण गाम, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुन कर सुगलथा, नाम की महिमा संत त्रिदोष है, संत प्रताप दुर्ग सबनते, संत का संगवट भागी पाइय, संत की सेवा नाम ध्याये,
1: नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, बहुत सा।

तत्परी जाप ताप ज्ञान प्रधान सत शास्त्र के ज्ञान जो अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सर त्याग मन मध्य क्रिया आने से प्रकार किए बोधना सुन दान हूँ मैं गौरतना शरीर कटाए हूँ मैं प्रजाती वर्त नहीं करे गो भांति नहीं तुल राम नाम जी चार नानक गुरुमुख नाम जपिए विश्वारे नौखंड कृष्ण त्रिशूल जीवे महादास पतिथर जीवे अगन माय हूँ मत प्राण कनक अति है वृद्धम दान निर्मी कर्म करे गो आसन जैन मारक संयम साधन निमत निमत कर शीर सजावे तो भी हों मैं नैल न जावे हर के नाम सुन कर कठिनाई नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीन देख के गर्भ मान न मन के होते सोच करे दिन अर रात मन की मैल न कंते जात जिसके को बहुत साधना करे मन से सबू न दिखिया करे जल दोवे बोधे अनीत सुटका होए काची गीत मन हर के नाम की मैं माई के नानक नाम उधरे पतित बहुमूते बहुत ज्ञानक जम का भोग्या से अनुगत अंतर कृष्ण ना भाते एक अगे अनेक अगन बुझे कोट उपाव भजे में सिजे सूचक नाई उसे आले मोह दया से माया जाल आवर कर तू सगले जमदाने गोविंद भजन दिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जिसको मांगे साधना की सेवा लागे जिसको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सजावे।

कटाते बल बल जाता। सजल पुरुष में पुरुष प्रधान साध संग जाता मिटे अभिमान। आप को जो जाने नीचा तो गनिए सकते ऊंचा। जाता मन है सगल चिरीना हर हर नाम तुम घर घर चिन्ना। मन अपने से बुरा मिटाना देखे सगल से साजना। सुख दुख जल समुद्र सचेता नानक पाप पुण्य नहीं देता। निर्धन को धन तेरो नाम मिठावे को नाम तेरा छाम। निमाने को प्रभ तेरो मान सगल भिका को देवो दान। करन करान हार स्वामी सगल बताते अंतर जामी। अपनी गत में जानो आपे आपन संग आप प्रभु राते। तुमरे उत्तर तुमसे होए नानक आवर न जान सोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म है हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुरु मत मल हिरिया। सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा।

भगवते हर नाम लो निर्मुनियारे अनया तो प्रभु सदा समार जिनकी आतिथि की सुरत नानक निज नाल श्री रमैया से कुंचे प्राणी तल मूल से तुम जानी।

तो नानक की जे प्रसाद हर ऊपर सुख से सुत भ्रास निपंता सन हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पम पावत अमुला जे प्रसाद भोंगे सब रखा सन साथ बसा दीने हस्त पाव कर्म नेत्र रचना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दो मूड़ अंग गे आपे नानक साध ले सब आपे आद्यंत जो रस निहारे तिथे कृष्ण करे गवार जाकी सेवा नौ मुझ पावे तासु मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सकदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी सहल पावे दर्जे माने तिसे बिसारे मुझ अजान सदा सदा यो भूलन हारे नानक राखन हारे अपारे रतन त्याग कौड़ी संग रचे साज सोच दूध संग मचे जो छन्ना सो असर करमाने जो होवन सो दूर पुराने छोड़ जाए निष्का श्रम करे संसारी पुत्र हरे चंदन ले उदारे धोए गर्द प्रीत प्रसन्न संग होए अंध सिंह में पतत बिकराले नानक काड लियो प्रभु दयाले करतूत पशु की मानस जाते लोग पचारा करे दिन रात बाहर देखन पर मलमाया सब स्नान करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोग समान अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे कर अथा जाके अंतर बचे तो व्यापे नानक के जन सहज समाते सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लो ओढ़ने बतावे कहाँ बुझारत पूछे डोरा निश्चय तो समझे भौरा

चैतनम नानक राख लियो आपन करतन तू ठाकुर तुंतै दास जियो पिंड सब तेरी रात मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा में सुख मेरे कोई न जाने तुमरे अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सागर समेरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सुवाद्याकारी तुमरी गत में तुम्हें जानी नानक दास दासुरानी लोक देन हर प्रभु छोड़ के लागे अंश आए नानक कहू न सिगे तिन नावे पत जाए अस्त्री दस वसूले पत पावे एक बस कारण दिखोट जवावे एक दीना दे दसी हरले तो मूड़ा को कहा करे जिथा गुरु नानी चारा सांसो जी जे सब नचा सब नमस्कारा जाके मल्ला दा प्रमीता सर तू साव मनु उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अग्न सावनी दे रात खाक पीठ बरते आनंद उलास अपनी अमान कच बहुर साहले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौरस का विश्वास न होवे जिसकी बस सुया गय रख प्रभ की आ गया माने माथे सुते चौगुन करे निहाले नानक सारद सदा दयाले अनक भात माया के देख सर पर होत जान अनेक बिरकी छाया छऊ रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दी से सुचालन हार लपट रहो कै अंध अंधार बताओ समझो लावे ने सांको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुगाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज दोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हसी अस बसरा मिथ्या रंग संग माया पेख हसा मिथ्या धो मोय अभिमान मिथ्या या कुछ ऊपर कर जुमान अस्थिर भगते साध की शरणा नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर गर्व को हिरे

0: गोविंद भजन बिन तिरथे सुरताम, ज्यों कृपन के निरारत धाम।
1: धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक ता कै बल बल जाऊं।
0: रहत अवर कछ अवर समावत, मन में प्रीत मुखो मंडलावत। जानन हार सबो प्रभीन, बाहर देश न काहू दीन।

संसार किसके सीत कर संसार जो तुम भाने किन प्रभ जाता नाल के उन जन चरण पराता करो बेनती पार्वन सब जाने अपना कीजा आपे माने।

मत जतनानित हरे लोग काम क्रोध अर लोभ मोह जिनस जाय अहमेर नानक प्रभु शरणागति सर प्रसाद गुरुदेव श्री जिन प्रसाद सति अमृत खाए जिस ठाकुर को रस मनवाए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको स्मृत परमगत पावे जे प्रसाद बसे समंदर तिते ध्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो सिख रचना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा दयाये जावन योग जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग तक अवर लुभावे जे प्रसाद सुख सुई दे मन आठ पैर सांता जस गावे जे प्रसाद तू सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपते दरगे मान पावे नाम तो पत से सर जाए जे प्रसाद आरोग संचन दे लिवलाओ विश्राम सने जे प्रसाद तेरा ओला रहते मन सुख पावे हर हर जस कैत जे प्रसाद तेरे सगल सुख दिखाते मन सरणी पर ठाकुर सब ठाके जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सासिमरो प्रभु ते जे प्रसाद पाए दुर्लभ रे नानक ताके भगत करे जे प्रसाद आभूषण पहरे गे मन सिमरन वालक कीजे जे प्रसाद अतु हस्त हसवारी मन से सो प्रभु

आप परोए प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाए, उठत बैठत सदत सद आए, किस ध्याए जो एक अलख ये प्रसाद करे तुमको दाने मना है प्रभु का ध्यान, ये प्रसाद तुम आचार बिहारी इस प्रभु साथ साथ सितारी, ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप तो प्रभु तुम रो सदा अनूप,

पथ रहे, गुरु प्रसाद नाम जगत कहे। जे प्रसाद करनारे, जे प्रसाद जगत मारे, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख जे बचना, जे प्रसाद हट कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण पले, जे प्रसाद परम जग पावे, जे प्रसाद सुख समावे। ऐसा प्रभु त्याग अवर कंट न को, गुरु प्रसाद नाम तो मन जागो। जे प्रसाद तू प्रश्न तारे, ते प्रभु को मूल न मनो विचार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, ते मन मूल तुता को जापे। जे प्रसाद तेरे कर पूरे, जिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साथ, रे मन मेरे तुता सौराचे। जे प्रसाद सुखी जप हो, नाम जाप सके जप हो। आप जपाए जप सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा से हुए प्रजा से, प्रभु दया से कमल जगाते। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया से मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न सुनि लया। जित जित लाओ तित लगे हर नाथ, नानक इन कै कछु न हाथ।

साध के संग सुख मन पावे, साध संग माया ते छिन, साध संग नाम तो प्रभु तो प्रसन्न, साधु संग सुमन सब मीत, साधु के संग महा पुनीत, साध संग क्यों नहीं बैर, साध के संग न बीजा बैर, साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग लगे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग लगभ हूँ भवे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग साध संग बस गोचर ले, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बसे थान के, साधु के संग महल पहुँचे, साध के संग दृढ़े सब धर्मों, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै गुरुवान, साध के संग सकुल उधारे, साध संग साधन सुगम तारे, साधु के संग सोधन पावे, जितन से सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कट घाल, दर्शन भेदत होत निहाल, साध के संग कलु खत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संगिया उआ सुहेला, साध संग दुखरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के

आदित्य नर से आदित्य संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साध से संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर मित कर साध से संग लगे सब मीठा साधु के संग जगत दीठा साध संग भया गया करी साध संग जत हमारी साध के संग मिटे सब रो नानक साध भेदे संयो साध की मैं माँ भेद न जाने देता सुने ते साबत आने साध की उपमा से बहुते दूर साध की उपमार भी धर दूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा मुझ से ऊँची साध की शोभा मुझ से ऊँची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु के मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेठ एकट बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी अपरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमले अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोत ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टन जैसे राजन को लागे सुल्तान ब्रह्म ज्ञानी के धीरजे जो बसुदा को खोदय को जन्म ले ब्रह्म ज्ञानी का है गुना नानक जो पावत का है सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैले न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाश जैसे धरू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अमान ब्रह्म ज्ञानी ऊँचे से ऊँचा मन अपने है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है नानक जन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के रीना या तुम रस ब्रह्म ज्ञानी सीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी से कठुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी के बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी महा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा ब्रह्म ज्ञानी के नाई धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला ब्रह्म ज्ञानी संगे सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के चरंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधारे ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागते ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध से आगते ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी से चैन वासे नाम तो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
ब्रह्म ज्ञानी कै होए तन, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे कवे आपे, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।

सुर नाम तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सुगल मनमाए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देत। ब्रह्म ज्ञानी का कक्षा न जाए दाख, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी शांत न पार, नाम सुब्रह्म ज्ञानी तो सदा निस्तार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे न मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जीव जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता,

ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी से शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्वसाधन।

बड़े मान मिथ्या ना ही रखना परसे मन में प्रीत निरंजन दर्शे परत्रिया रूप न देखे नेत्र साध की पहल संत संग हेत करन न सुने कहूं की निंदा करते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखा पर हरे मन की बासना मन से करे इंद्री जिते पंच टोक रहते नानक कोट मधे को ऐसा पर से बैसलो सो जिस पर सो प्रसन्न जिसन की माया ते हुए धन्य

को सब सुनी परे सगल संग आत्मी उताके सगल संग आत्मी उनाथ ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु आज्ञा आत्म हितावै।

कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोरे, कई कोट अभित आत्म निकोरे, कई कोट पर दर्द तुहरे, कई कोट दर्द न करे, कई कोट माया शर्माए, कई कोट परदेश भरवाए, जित जित

कई कोट सदगति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर को पाए, कई कोट पाप विष्णु जाए।

के हाथ। कई कोड भय बैरागी राम नाम संतन लागी। कई कोड प्रभु को खोजन आत्मे पार ब्रह्मते। कई कोड दर्शन प्रत्यास इनको मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोड मांगे सत्संगे पादुम चिल्ला गारंगे। जिनको हो आप सो प्रसन्न मानिस के जन सदा धन धन।

चुरावे इससे हाथ हो ता सब कुछ ले जो कुछ भावे सोई करे अन जानत दिखावे रचे जे जानत अपन आप बचे धर्म भूला दे दिस भावे नमक माय चार कुंड करे आवे।

लागे जाता दृष्ट छूना आवे तत्काल दैद सुगत गावे जा को अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गले जगदीश जियो पिन सब तिरात घट घट पूरन ब्रह्म प्रयात अपनी बात आप बनाई नानक जीए देख बड़ाई।

तृष्टि जितेंद्र राजन मान सुनत पाठी भोस्वान जो जाने मैं जो बलवंत तो हो वत्ता का जंत।

धन भूम का जो करे गुमान, तुम रखंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबे बचावे, नानकियां मुख आद है सुख पावे। धनवंता हो कर गावे, प्रिंस मान सत्संग न जावे, बहुल अक्षर मानस ऊपर करे आसे, फल भीतरता का हुए विनाश। सबसे आप जाने बलवंते, तुम्हें हुए जाए भस्मंत,

हरे। गुर प्रसाद का मिटे अभमाने, सो जन नाम च दर गए परवाने। को कर्म करे उधारे, कर्म पावे सगले बिरथारे। अनित तपस्या करे अहंकारे, नरपुर फिर तेरे अवतारे। अनुज जतन कर आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे दवे। आपस को जो भला कहवे, जिसे भलाई निकल न आवे।

जब लग जाने से पे छोए तब उसको सुख नहीं कोए, जब पे जाने में कि करता तब लग गर्व जौन में फिरता, जब धारे को बैरी नीत तब लंगे चलना ही तीत, जब लग मोह मगन सुनमाए तब लग धर्म राय देश जाए, कब कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक ऊपर, सर खटे लख को सधावे तृप्त नयावे माया पाछे पावे, अनेक भोग दुखिया के कराए न तृप्तावे थक थक मरे, बिना संतोष नहीं सुराजे सुपन मनोरथ व्यर्थ सब काज, नाम रंग सर्व सुख होए दुर्भाग्य सुख प्राप्त होए, करम करम नहीं आते आप सदा सदा नानक अरे जापे, करम करावन करम हार किसके हाथ विचार, जैसे देख करे तैसा होए आपे आप प्रवेश होए, जो कि तीनों सो अपने रंग सबसे दूर।

के संग बुझे देखे कर देखे आपे एक आपे अनेक मरे न बिन सयाग न जाए नाम सद मेरे आत्माए आप उपदेश है समझे आप तेरे क्या सब कैसा आप तीनों आपन सारे सब से तुस्ता हो करने हारे उस दिन कहो कि सोए कौन सन करे कोए अपने चरत आप करने हारे कौत करे रंग पार मन में आपे मन अपने माहे नाम कीमत न जाए सते सते सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद ने

कीना। भला भला भला तेरा रूपे सुंदर अपार अनूपे, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, झक झक सुनी सुरनु बठाणी।

मित्रों, संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हारे, संत के निंदा नानका बौर बौर अवतारे। परे संत के दुखन हार जन हटै, संत के दुखन जनते नहीं छुटै, संत के दुखन सुखल जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन तो भाते ही न। संत के हते को रथन कोए, संत दुखन खान कसोए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंद तुम्हें करे, संत के दुखन ते मुख भवे, संतन कै दुखन साग जूं लवे, संतन कै दुखन सर्ब जोन पाए, संत दुखन प्रग जोन क्रमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को चले, संत कै दुखन तेरे सब जाए, संत कै दुखन नीच नहीं जाए, संत सीता था को नाए, नान सन भावे था ओए दीगत पाए, संता निंदक मार ताई, संता निंदक संकित न पाई, संत का निंदक मां प्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज से हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोगे, संत के निंदक को सदा विजोगे, संत के निंदा दोख में दोखे, नाम के संत भावे सा उसका भी हुए मोखे, संत का दुखी सदा अपरिते, संत का दुखी के सहसा नहीं मिटे, संत के दुखी को दान ला गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदाधिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख से डरे,

संत दुखी दिव्य रूप हो जाए, संत दुख को दर्जन मिले जाए, संत दुखी सदा सहताइए, संत दुखी न मरे न जियाइए। संत के दुखी की पूजे न आता, संत का दुखी चले निराशा, संत दुख कृष्ण कोए जैसा भावे तैसा कोई होए, प्या कृष्ण मिटाए कोए नानक जाने सच्चा सोए, सागर तुझसे ऊपर में हारे सदा सदा तुझको नमस्कारे। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे भयावो सास विरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को किया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसमो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नाम जन से।

0: संसार एक दंगल है और इस दंगल दे विच पांच पहलवान खड़े हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। कोई काम तो बचदा है तो क्रोध दे वश हो जांदा है, क्रोध तो बचदा है तो लोभ दे वश हो जांदा है, लोभ तो बचदा है मोह दे वश हो जांदा है, हंकार इस नु डेग लैंदा है। ए पांच पहलवानड़े ऐसे हन जो हर एक नु डेग देंदे हन। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हन कि इना पंजा पहलवाना तो मैं किवें फतेह प्राप्त कीती, ओ है गुरु दी बख्शिश। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मेरी पिठ ते मेहर भरिया हाथ रख दिता। वात वजन टमक पेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां, निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दित।
1: सोदत सोदत सोदत सिंगिया, गुर प्रसाद सतगुरिया, जब देखो तब सब किस मूल है, नान सो सुखम सोई अचूल, न किस जन्मे न किस मरे, आप चलित आप ही करे। आवल जावल दृश्य अनदृश्य, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप अंत जुगत रच थापे ओ थाप। अविनाशी नाई कित खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड, पलख अभेव पुरख परता, पाप जपाए नानक जाप, जिन सब जाता सो तो भावंत, सगल संसार उधरे तेनो मंत, प्रभ के सेवक सगले उधारन, चल के सेवक दुख विसारन, आपे मेल लय कृपाल, गुर साथव जप भय निहाल, आपे मेल लय कृपाल, गुर साथव जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसने कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नाम कृष्ण प्रभु सम करमान, जो कृष करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग, सहज सुभाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सात ऐसा दृष्टाना, जिससे उपजे चित माए समाए, सुख निधान उन बने आए,

सगल घट तू है। धनवंता हूँ क्या तू गर्द है, जा सब जिसका भी आदर दे। अतुरा जे को कहवे प्रति कला बिना कह भावे। जे को होए बैदातार तिस देन हार जाने गवार। जिस पुर पर सातु के हो रोगे नान सोजन सदा रोगे। जो मंदर को थामे

मनसा पूरन सरना जो जो कर पाया सोई हो। भरम भरन जाता नेतर कोरे तिसका मंत्र न जाने हो रे। आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व ठोक सुने धर ताके। राज में राज जोग में जोगी सब में सपी सर व्रत में भोगी। ध्याए ध्याए भगते सुख पाया नानक तिस पुरस्कार ने अंत न पाया। जासी लीला कीमत नाई सगल देव हारे अवगाय। पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। उम्मत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम भयावे से। ते गुण में जा को भरवाए जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच किसके अस्थान जैसा जन वैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाते रंगे नाना भेद करे तिरंगे। नाना विचिनो बिछारे प्रभु अविनाशी एक संकार। नाना चल करे छन माहे पूरे पूर्ण सुखाए। नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सबगर किसके सब किसके खाऊं जब जब जीवे नान करनाऊं। नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पताले नाम के धारे सगले अतार। नाम के धारे पुण्या सब भवन नाम के संग उदरे सुन सुन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नाम चौथे पद में सूजन गत पाए। रूप सत जाता सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान। कर पूत सत सत जाती बाणी सतपुरुष माए समाणी। सत कर्म जाती रचना सत मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर वे प्रवेश। सत नृत बुझे जे कोए नाम जगत का की गत होए। आप सत्य किया सब सत्य आपे जाने अपनी मित गते। जिसके शिष्य सो करने हार और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया नानक जो कुछ भावे सोवर पिया।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

भुजंगम घेरे, भुजंगम घेरे। पाली रवदास साहब कहते फिर वो जड़े है भुजंगमा नाड़ी घूमन घेर घेरे हुए है, या फिर शरीर में मिट्टी लाने के कफेर पाए हुए है। सिद्ध आसन परचे घने हाथ निग्रह कौतक लख हीरे। भाई लाल साहब कहते हैं सिद्ध लोग जोड़े वो चौरासी आसन है, चौरासी लंग जूनों से एक एक आसन लै लिया, तो सिद्ध आसन ला लिया, तो बहुत लोग इस परचे हुए। अठ निग्रह, अठ इंद्रियों निग्रह में रोकन की क्रिया करते हैं, तो इन्हों के कौतक जोड़े लखा तरह के देखी हुए हैं। सिद्ध आसन परचे घने, सिद्ध आसन लाने घने मैंने बहुत परचे हुए हैं। अठ निग्रह, अठ न इंद्रियों का रोकते हैं बकारा को, कौतक लखेरे इस तरह के कौतक लखन हेरे मैंने देखे। पारस मणि रसायण करामत कालख आ मेरे। फिर भाई गुरदास साहब कहते हैं कई पारस, कोई मणि, कोई रसायणा, रसायण में उन्हें पारा मार लिया, रसायणा की करामात इन्हों की जी स्याही है ये अंधेरे मैंने अन्ने हो रहे हैं। आठ कर्मों के लखन तो पाछियां नहीं कोई लगे है, देखने से ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भी लोग सिद्धा के जोड़े चौरासी आसन हैं, कामयाब हो गए, बड़े बड़े हैं जी, बड़े डूंगे लगे हुए हैं। और हाथ कर्मों के अनेक तरह के तमाशियां में लगे हुए संसार से देखने जा रहे हैं। पारस, पारसी बाबा पारस है मेरे को सोना बना देना, मणि है जिन्हें सप की जहर दूर करने वाली, रसायण सोना बनाने दी जिहड़ियां करामात इन्हां दी जिहड़ी कालख है ये हनेरे च पाए हुए हैं। कई माइया वो सोना बढ़ा लेंगे इन्हां दे जाल च फस के अगला सोना भी गवा देंगे, इस तरह के लोग बड़े हैं। पूजा वर्त उपाने वर सराप सिर सख्त लवेरे। फिर भाई गुरदास साहब कहते हैं इतने बस नहीं हैगी, पूजा हम 16 प्रकार की पूजा करते हैं, कोई ठाकुर जी 16 प्रकार की पूजा कर रहे हैं इस लग रहा है, कोई अकादशियां के वर्त ये लगे हुए हैं, कोई जंगम हिंदा घूमन के माथा की कंगरूर नाली जी दसवें द्वार में उतान लै जाते हैं।

वनस्पति पामे फल फलतों रहत हो गए पामे फलदार हो गए सफल फल दे लदी हुए काल चंदन गोई ते जड़ी चंदन बावन चंदन की खुशबू आ इन्हों सारे चंदन गोई चंदन बना दी है कोई इन्हों चंदन बना दी है।